ये यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो है, सरकारी ज़राए से आपकी ज़बान में सेहत की मोतबर मालूमात। सरकारी ज़राए से सेहत की ताज़ा तरीन मालूमात ये हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से WHO के डायरेक्टर जनरल ने सेहत के निज़ाम की फराहमी, हंगामी इमदाद और ज़हनी सेहत को आगे बढ़ाने पर मजबूत तआवुन को तस्लीम करने के लिए उर्दन का दौरा किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रियासतहाए मुत्तहिदा के इनखिला के नोटिफिकेशन पर WHO का बयान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डेविड नाबारो को खराज तहसीन पेश करना। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक दवाई याद बाय हर्बल KNP वन कैप्सूल 30 गिनती की बोतलें वापस मंगवा रही है। वजह, मंजूर शुदा NDAA के बगैर मार्केट की गई प्रोडक्ट में मंशियात के गैर ऐलानिया अज्जा डेक्सामिथासोन और साइप्रोहेप्टोडियन शामिल हैं। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक फूड प्रोडक्ट रिकॉल मिडवेस्ट पॉल्ट्री सर्विस COH और LELECTRIC दर्ज जैल कन्फिग्रेशन में पैक किए गए ग्रेड ए के सफेद इन शेल चिकन अंडे वापस मंगवा रहा है। एक क्रोगर मीडियम 12 अंडे नेट WT। बचपन की वैक्सीनेशन। वैक्सीन जिस्म को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी संगीन बीमारियों से लड़ने की तरबियत देती हैं। अपने बच्चे की वैक्सीन को शेड्यूल के मुताबिक रखना बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करता है और अगर कोई खुराक छूट गई हो तो कैच अप खुराक दस्तियाब हैं। हिफाजत के लिए वैक्सीन का वसी पैमाने पर मुतालिया और निगरानी की जाती है। अपने मकामी क्लिनिक से पूछें कि आपके बच्चे के लिए कौन सी वैक्सीन वाजिबुल अदा है। पीने का महफूज पानी। गैर महफूज पानी पीने से असहाल, हैजा और टाइफाइड हो सकता है। अगर पानी गैर महफूज हो सकता है तो उसे रूलिंग बॉयल में उबालकर या साबित शुदा वाटर ट्रीटमेंट या फिल्टर का इस्तेमाल करके उसे महफूज तर बनाएं। इलाज शुदा पानी को साफ ढके हुए बर्तन में जखीरा करें। आपके पानी की हिफाजत आपके पूरे खानदान की हिफाजत करती है। बच्चों में बुखार। बुखार इन्फेक्शन के लिए जिस्म का रदामल है और ये बच्चों में आम है। बच्चे को आराम देह रखें और काफी मिकदार में सयाल पेश करें। अगर बुखार 2 दिन से ज्यादा रहता है या अगर बच्चा बहुत गनूदगी में है, सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, गर्दन में अकड़न है, ऐसा खारिश है जो दबाव से खत्म नहीं होता है या ऑक्शीप है। तनाव से निमटना। तनाव और कम मिजाजी आम है और आपकी ज़हनी सेहत का ख्याल रखना आपकी जिस्मानी सेहत की तरह अहमियत रखता है। आसान इकदामात मदद कर सकते हैं। रोजमर्रा का मामूल रखें, उन लोगों से जुड़े रहें जिन पर आप भरोसा करते हैं, फ़आल रहें और अच्छी तरह आराम करें। अगर उदासी, परेशानी या नाउम्मीदी हफ्तों तक रहती है या रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर करती है तो हेल्थ वर्कर तक पहुंचना ताकत की अलामत है, कमजोरी नहीं। रोजमर्रा की गिजायत। मुतवाजन गिजा तरक्की, तवानाई और मजबूत मुदाफ़ती निज़ाम की हिमायत करती है। हर रोज मुख्तलिफ किस्म के खाने शामिल करने की कोशिश करें। फल और सब्जियां, सारा अनाज, फलियां या प्रोटीन के दीगर ज़राए, मीठे मशरूबात, नमक और बहुत ज्यादा प्रोसेस शुदा खाने की अशिया को महदूद करें। छोटी मुस्तहकम तब्दीलियां पायदार सेहत में इजाफा करती हैं। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी की रोकथाम। मच्छर मलेरिया, डेंगू और दीगर बीमारियां फैला सकते हैं। कीड़े मार दवा से इलाजशुदा जाल के नीचे सोना, घर के आसपास खड़े पानी को हटाना और रिपेलेंट का इस्तेमाल आपके खतरे को कम करता है। अगर आपको किसी ऐसे इलाके में तेज बुखार है जहां मलेरिया होता है तो जल्द टेस्ट और इलाज करवाएं। इब्तिदाई देखभाल जान बचाती है। ये सेहत की मालूमात है, तिब्बी मशवरा नहीं। ये यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो है, सरकारी ज़राए से आपकी ज़बान में सेहत की मोतबर मालूमात। सरकारी ज़राए से सेहत की ताज़ा तरीन मालूमात ये हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से WHO के डायरेक्टर जनरल ने सेहत के निज़ाम की फराहमी, हंगामी इमदाद और ज़हनी सेहत को आगे बढ़ाने पर मजबूत तआवुन को तस्लीम करने के लिए उर्दन का दौरा किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रियासतहाए मुत्तहिदा के इनखिला के